देश बिहार मध्य महाराष्ट्र कोस्टल कर्नाटका कोंकण एंड गोवा फॉर द नेक्स्ट टू डेज सिमिलर कंडीशंस आर आल्सो एक्सपेक्टेड ओवर पार्ट्स ऑफ सिक्किम आसाम मेघालय केरला एंड माहे सब हिमालयन वेस्ट बंगाल फॉर द डे आईएमडी सेड अ ग्रेजुअल फॉल इन मैक्सिमम टेम्परेचर्स बाय 4 to 5 डिग्री सेल्सियस इज एक्सपेक्टेड ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 to 4 डेज मीनवाइल द मेट डिपार्टमेंट हैज फोरकास्ट हीट वेव कंडीशंस ओवर दिल्ली हरियाणा एंड चंडीगढ़ टुडे. Benchmark domestic equity indices were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex was down 63 points to 76,665, while the Nifty dipped 9 points to 23,937 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and 4 states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in a 4-3 penalty shootout. With that, we end the midday news.